दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश. जी हां, ये सरडे है. अगर क्राइस्टचर्च में आप हो तो आपको तो पता है कि वेदर बहुत ही सुहाना नहीं है. इट्स क्वाइट सेड एंड क्वाइट बेड और ठंड भी है और बारिश भी हो रही है. लेकिन आई एम श्योर यू आर कीपिंग वार्म. जी हाँ, थोड़ी ठंड भी है, वैसे भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑफकोर्स इन विंटर. तो आप चाय पीजिए, बड़ा भजिया खाइए खाइए और अपने आप को गर्मी रखिए और इन्जॉय करते रहिए. और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लिसनिंग टू अस. और जो लोग हमें फेसबुक में हर वक्त देखते हैं, देन वी विल बी कमिंग ऑन फेसबुक लेटर. थोड़ी देर में हम फेसबुक पर आने वाले. हमारे जो गेस्ट आज के हैं, दे आर गेटिंग इन टू द स्टूडियो. आप हमें सुन रहे हो फ्रॉम प्लेन से मीडिया मद्रास स्ट्रीट इन क्राइस्टचर्च. तो लोग जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे बातें करते चलेंगे. आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा जिसके विषय में बात करने वाले हैं, इट्स अ बांसुरी, ए टेल ऑफ लव. जी हाँ, जो टिकट्स आर दे सेलिंग फास्ट. जो इवनिंग जो टिकट्स इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट और जो कुछ टिकट्स बचे हुए उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं. कुछ और जानकारी भी आपको देने वाले हैं और जो लोग इनसे जुड़े हैं उनसे भी हम बात करते चलेंगे. इट इज प्राउडली presented by Kathakar Charuji. She's a teacher jo Christchurch mein hai, and she's got many students. Or this is I think one of those rare occasions ki aapko milega dekhne ke liye such a production, and you don't want to miss out. So it's happening on the 12th of September. It's not far off. Agar aapne ticket nahi liya, then it is time that you buy the tickets, kyunki kuch tickets bache hue hain. If you are late, then you might miss it. To chalo hum aage badhte hain. Hamare paas kuch songs bhi hai jo naam aapko सुनाते चलेंगे और साथ साथ में कुछ और जो जानकारी हमारे हाथ में लगेंगे उसके विषय में भी हम बताते चलेंगे. कुछ और भी प्रोग्राम है. हरियाली तीज जिसे आपको पता है वो भी आ रही है, जो शालिनी गुप्ता का जो टीम है हर वक्त हर ईयर लाती है. तो दिस टाइम इट्स हैपनिंग ऑन 22nd अगस्त, व्हिच इज आई थिंक अ वीक अवे. और देयर इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन टेम्पलटन. जी हाँ, टेम्पलटन हॉल व्हिच इज वेरी पॉपुलर, जो 64K क्राउड में वहाँ भी आप जा सकते हो. इट्स अ फ्री एंट्री एंड इट्स फ्रॉम 5:30 PM टू 8 PM. सो देयर इज द अदर इवेंट जहाँ पे आप जा सकते हो. और भी काफ़ी जो प्रोग्राम हो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर्स आर ग्रोइंग. हम और भी जो इवेंट्स देख रहे हैं, मेनी प्रोग्राम्स आर हैपनिंग. जस्ट कीप इन टच, है जो सफीजी रेडियो पेज पर हम कोशिश करते हैं कि जो

कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम उस पर डाल देते हैं फॉर यू टू नो सो दैट यू डोंट मिस आउट. मुझे पता है कि भाग दौड़ में काफ़ी बिजी होते हैं पीपल मिस इट एंड देन बाद में आप जो फोटोज वगैरह देखते हो देन आपको पता चलता है कि इवेंट हो गया है एंड यू हैव मिस्ड इट. और हम बधाई देने चाहेंगे सभी लोग जो आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मना रहे हैं स्पेशली इंडिया गेनिंग द 80th ईयर हो गया है. सो सभी को हम बधाई देंगे. आज ही हम सुबह गए थे द सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज बाई हितेश जी. इट वॉज ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा लगा. इट वॉज इन रिचमंड एंड वी आर होपिंग कि आप सभी लोग हैविंग अ गुड टाइम. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, सॉन्ग कुछ सुनाते हैं, उसके बाद में जैसे हमारे जो गेस्ट जुड़ जाएंगे तो उससे भी हम बात करते चलेंगे.

हमें भी आपका साथ बढ़िया लगता है और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और जैसे हमने शुरू में मेंशन किया है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बांसुरी अ टेल ऑफ लव. जी हाँ, हम कृष्ण राधा की बात करने वाले हैं और हमारे साथ है कुछ कुछ जो गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो मोनिका जी है एंड वी आर गोइंग टू वेलकम नीलेश एंड अदर्स. जैसे जैसे वो आएंगे हम उनको भी वेलकम करेंगे और फिर हम जाएंगे फेसबुक लाइव जहाँ पे आप हमें देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग टिकट्स. जी हाँ, टिकट्स आर गोइंग क्वाइट फास्ट एंड वी डोंट वांट यू टू मिस इट. इसलिए हम चाहते हैं कि आप ग्रैब कर ले टिकट अभी बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बाद में लोगों नो वी कम टू देम एंड दे डिडंट रियलाइज कि ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है. सो प्लीज डू लिसन एंड गेट योर टिकट्स व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर. तो चलो हम आपको और एक जो गीत सुनाते हैं और उसके बाद में होपफुली एवरीबॉडी इज हियर एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर इंटरव्यू.

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

भरी मटकी दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फीजी रेडियो में हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जो लोग हमें हमारे साथ में अभी फेसबुक में जुड़े हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, जो लोग हमारे साथ फेसबुक में थे कि हमारे पास जो गेस्ट है वो जुड़ रहे हैं, तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारे साथ राकेश इज हियर। वी हैव गॉट नीलेश फ्रॉम लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन, मोनिका, जी हाँ मोनिका को कौन नहीं जानता है, एंड देन वी हैव

0: got Prachi as well. इनसे हम बात करते चलेंगे और चर्चा करेंगे बांसुरी टाइल ऑफ लव इसके जो पोस्टर आपने हमारे जो पेज है जलसा फिजी रेडियो पे देखे होंगे और इट्स नॉट फार ऑफ बहुत दूर नहीं इट्स ओनली 12th ऑफ सितंबर और इसका जो डबल सेशन है एक सेशन इज ऑलरेडी बुक्ड आउट सो और एक सेशन में कुछ टिकट्स बचे हुए एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर हम आपको बताएंगे कैसे आप टिकट्स ले सकते हो और हम ये भी आपको बताने वाले हैं क्यों आपको टिकट्स लेना है और अगर ये भी हम शायद बताएंगे उसके बाद में कि अगर आप टिकट नहीं लेते हो तो क्या आप मिस करने वाले हो और हम जो राकेश जी उसको स्वागत करेंगे अपने इस स्टूडियो में हमने हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया एंड सेम विद नीलेश जी लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स घर बनाने का आप जो काम करते हो और वी हैव गॉट मोनिका हु कैन एक ही टाइम पे वो बहुत काम कर लेती है शी कैन लुक आफ्टर हर फैमिली उसके जो दो दो बच्चे भी है एंड देन शी कम्स टूअर्स हमारे भी कुछ काम रहता है वो भी कर देती है एंड देन शी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी संभाल लेती हैं और अगर बात हमें कराना तो हमसे बात भी करा लेते हैं एंड वी हैव गॉट प्राची एज वेल उससे भी हम बात करते चलेंगे सो वी विल स्टार्ट विद राकेश विद यू फर्स्ट तो अभी तक आपका ये जो शो है कैसे जा रहा है एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान जी हाँ चारू जी शी इज हैप्पी विद एवरीथिंग
1: यस वी आर रियली हैप्पी एंड thanks to each and everyone it's like audience and the person who bought the ticket and to come on the show I will do a little bit brief about the show like for the matinee and the evening show
0: yeah
1: in the last monday the evening show was sold out then uske baad hamare paas bahut sari inquiries aayi ki hame ticket chahiye then uske baad humne thoda sa apna seating arrangement ko और एक्सटेंड किया और उसमें हमने 20 टिकट्स और एक्सटेंड की तो दिस मॉर्निंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे मोनिका जी एंड कथाकार टीम ने परफॉर्म किया और वापस आए तो देखा कि हमारा वो एक्सटेंड जो हमने की थी सीट वो भी सोल्ड आउट हो चुकी
0: है वाओ दैट्स अ गुड न्यूज़ सर कांग्रेचुलेशंस
1: तो सभी बधाई के पात्र हैं और मैथनी शो के लिए अभी तक हमारे पास जो फाइनल जो नंबर्स हैं वो 42 सीट्स अभी वैकेंट हैं
0: जी
1: होपफुली अभी 26 टू 27 डेज अभी हैं तो जितना जल्दी हो सके टिकट्स आर सेलिंग टू फास्ट
0: जी
1: एंड बांसुरी के लिए अगर थोड़ा मैं आपको और बताऊं कि इसमें क्या है क्या होने वाला है आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से बांसुरी इज बेसिकली दिस इज अ फिक्शनल डांस ड्रामा थिएटर प्रोडक्शन मोर देन 55 परफॉर्मर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमारे मोर देन जो भी हमारे कथाकार स्कूल्स से स्टूडेंट्स हैं उसके साथ हमने कीवी इंडियन थिएटर का कलेबरेशन है उस तो और गरबा डांस रिदम ग्रुप है और हमारे लोकल आर्टिस्ट जो कम्युनिटी आर्टिस्ट जो अपना पैशन फॉलो करते हैं उनके साथ सबको कोलैब करके एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले हमने रिक्वेस्ट की थी अपने क्रिएटिव डायरेक्टर विष्णु श्री कुमार जी से तो चारू ने और विष्णु श्री कुमार जी ने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया तो उसके बाद हमने टीम को एक साथ एक जगह पे बुला के और सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया कि अभी डांस है और उसके बाद माइम है और थिएटर है डायलॉग्स है इमोशंस है ड्रामा है फाइट है कुछ सस्पेंस भी है तो वो आप लोग टिकट बुक जिन्होंने कर लिया है तो वो वहाँ पे देखेंगे थैंक यू आप बाकी की डिटेल्स कथाकार के बारे में रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका जी से
0: जी और इससे पहले मोनिका जी के पास जाए देन ये आपने उसमें बोला वायलेंस आई मीन कुछ फाइट्स वगैरह भी है
1: नहीं जस्ट वायलेंस लाइक जस्ट टू बी एंटरटेनमेंट पर्पस इज द मोटिव ऑफ दिस वन इज इट जस्ट नॉट लाइक ए प्लेन शो
0: जी
1: सो इट्स लाइक ए रोलर कोस्टर इसमें डांस है भरपूर डांस है वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स हैं प्रॉप्स हैं साथ में बहुत अच्छी डायलॉग्स डिलीवरी भी हैं
0: जी
1: तो इसीलिए उस फाइट सीन को डायलॉग डिलीवरी के साथ हमने मर्ज करके तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन तैयार किया है तो आप होप ऑडियंस लाइक करेगी
0: कैन यू नो कि जब वो जो सीन रहेगा उसमें कौन कलाकार है
1: हमारे इंडियन की इंडियन थिएटर के कलाकार भी हैं और कथाकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं डांस के लिए स्पेशल हमने रिक्वेस्ट किया था गरबा टीम से
0: जी
1: तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं बाकी स्टोरी अगर मैं सारी यहाँ बता दूँ
0: तो वही तो हमारा काम होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा
1: तो ऑडियंस फिर

0: नहीं मजा आएगा उनको तो, लेकिन स्टिल बहुत सारे क्या कह सकते हैं उसको, मतलब आप बहुत सारे इफेक्ट्स जो देखोगे स्टेज के ऊपर जो आपको नहीं पता लगेंगे
1: जी.
0: आप मजा आएगा आपको
1: जी. और मोनिका जी आप बताइए, आप जब स्कूल डेज में थी ड्रामास वगैरह में पार्ट लेती थी?
2: बहुत
1: जी हाँ,
2: बहुत. आप और उसके शक्ल देख के ही बता सकते हैं
1: और उसके बाद में ऑब्वियसली जब आप क्राइसिस में